जानी है छानी जन्मा दिन मेरे जानी है छानी जन्मा दिन मेरे जानी है छानी

0: सहकारी संघ चितवन। हाम्रा शाखाहरू भरतपुर 10 इन्द्रेडी टोल, भरतपुर 3 बेलसुक।
1: रेडियो साइनो 89.8 मेगाहर्ज। तपाईँ हाम्रो अटुट साइनो।